0: When we are doing Karma Yoga, that time we shall observe our psychic condition, the psychic state of our being in that situation. Now, what you think? The Karma Yoga is such a technique where you can analyze your entire life and future life.
1: The source of strength to help others and ourselves lies in sadhana, in the practice of yoga. Only one who understands movement can control movement. Every movement is a sort of hunger. We only move when we have desires or fears. Only one who consciously masters the movements of the body, who masters the movements of breathing, who masters the movement of the mind, only he or she can reach the ultimate aim of every movement. That aim is Purna, completeness, our own divine completeness, which is realized only in the deepest stillness. This center offers a number of possibilities, not only for humanitarian work, but also for working on ourselves. But in order for the center itself to be completed, it needs much support. Everyone, every idea, and every contribution are welcomed. Here, nothing is in vain. The following days took us to Jodhpur, yet another of India's pearls. Here at the hill, over the city, in the ashram of Ajneshwari, yoga and daily life has made it possible for these people to overcome their weaknesses, their stiffness, and their restlessness. Simple but beneficial yoga exercises have had an excellent effect. Touched by the strength of yoga, these people could hardly wait for the evening to see and hear Swamiji.
0: कहाँ तितिक्षा की, कहाँ सहन करने की शक्ति है? अरे थे कट ध्यान करियो, थारो ध्यान तो पगों में है तो कि हमारा पग दुखे। हमें तो उस निराकार के अंदर जाना है, चिदाकाश के अंदर यात्रा करनी है, हमें तो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी है। कहाँ? हमारी स्वयं चिदाकाश के अंदर। और हमारा चिदाकाश कितना बड़ा है? हमारा चिदाकाश इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा, जितना ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है।
1: To the delight of many, Swamiji conducted the morning sadhana. This morning the subject is meditation.
0: The liberation doesn't come through some postures of the body. The liberation will come through the knowledge and Guru Kripa.
2: Everything what's happening, I'm beyond this. Be the witness of your body. Be the observer of your thoughts. And feel that I am relaxed. I'm the bliss. I am the bliss.
1: Every evening, spiritual thirst was quenched by the words of the Guru.
0: Ushvayambhu Shiv. वह चैतन्य शिव जिनके द्वारा सूर्य चंद्र तारे ग्रह दृश्य दृश्यमान शक्तियां गुण तत्व आदि की उत्पत्ति हुई और वही चैतन्य शिव स्वयंभू। इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर विद्यमान है।
1: A new morning, a new yoga technique. Today, on schedule, it is Tratak, an excellent method for improving and balancing our emotional and mental functions.
2: Try to gaze on the flame carefully. Try to become one with the flame.
1: Swamiji has found the time to visit a school for children with hearing and speaking problems, deaf and mute children. The arrival of a yogi always offers something that can help.
0: Very good. बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की तीन चार और अलग अलग क्रियाएं हैं और साथ ही साथ वेजिटेटिव नर्व सिस्टम्स जो है सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक एंड सेंट्रल नर्व, तो उसमें कुंभक के द्वारा प्राणायाम, विशेष कुंभक होती है। उस कुंभक से क्या होता है कि कुछ नाड़ियों का यहाँ खुल जाना होगा, सेंट्रल जो केंद्र है वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाता है।
1: This is how our days in Jodhpur passed, between sadhana, humanitarian work, and satsang.
0: और उस हृदय काश के अंदर कमल के अंदर में एक छोटी सी गुफा है और उस गुफा के वो अंदर वो जो क्लोज इट इज ए क्लोज ग्रंथि है या मांसपेशी है, विधीन उसके अंदर में एक स्पेस जो है गुफा, और उस स्पेस के अंदर का जो वो गुफा के अंदर की जगह जो है वो स्पेस है, उसमें जो समाया हुआ है वह आत्मा है।
1: Spontaneity is a precious Hindu quality. This poet composed an ode to Swamiji on the spot.
3: राम भजन रोचो घड़ियो मन सतगुरु सही समझा मन मारा ज्ञानी गुरु एड़ा मिलिया मन मारा सतगुरु

0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. A photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: स्वामी जी मातानंद जी महाराज साहब तो आज हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं ऐसे बताया गया, पर उनका संदेश हमारे बीच में है, आपके बीच में है। लंबे समय तक कैसे उन्होंने वो काम किए जिससे कि आत्मिक सुख मिले, आत्मा को शांति मिले, सद्भाव का वातावरण कायम हो, एक लंबा जीवन उन्होंने बिताया और किस प्रकार से वे समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देते गए। ये सौभाग्य है पाली जिले का, देशुरी तहसील का और निप्पल गांव का, जहाँ वो पैदा हुए। उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आप सबके सामने है।
2: टुडे विद अस large number of our foreign friends are also here. I would like to acknowledge their dedication to this institution. I welcome on behalf of all farmers here that looking to your devotion, it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking.
3: So, बाबूजी मन से यहाँ हैं, तन से वहाँ हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, नशा पत्ता छोड़ो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ो, सर्वधर्म का सम्मान करो, जिससे कि विश्व शांति बनी रहे, प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो। बोल श्री दीप नारायण भगवान की। धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की।
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless and His glory is endless. He is beyond our imagination, beyond the borders and beyond everything.

0: ॐ बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्री विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: तरक्की जय।
1: श्री भगवान की जय। श्री स्वामी लालानंद जी गुरुदेव की जय।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री सत गुरुदेव की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म मात पिता गुरुदेव की ओम शांति शांति शांति।

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: साई माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की

0: भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

0: Sridip Naran Bhagwan Ki Jai, Shri Satguru Deva Ki Jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरट है।

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

प्रभु चरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

0: विद्दु and when is this thing, everything is have done, then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di da da di nam tak ta
1: Shiva koi klesh da
0: gidi gidi blag di kira ka gri gri grag da du da di ka bai ta re ge ge ge ge एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है नींद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलखपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति।

is predetermined, and it is already predetermined. It is decided in heaven, and we celebrate in earth. It is saying the marriage. So that's why he also said that, well, so we are in our destiny. So no matter you taste or not, so I'm not attracted. So and Tulasi said, well, now you pass. That's all right then. So because I was testing you, and you are the person, you are the brave person. You did not came, and you do not lose your emotions, and you don't bring in the, you never lost. So you always remain in that in a strength. So I like this sort of person. And if some person comes and emotionally lost, and later on he will go away. So I always want to strength person. So you are a strength. Okay, you are eligible now. You pass the exam. So we can marry. And at the same time, it says like, the Shankhasura also said, well, this is also my test as well. Many girls, many, they attracted the appearance, physical appearance and their braveness. But I am so happy that you are not like that. So we have got that great vision, great aim. So our life will be successful. So there is something, some reason. That's why I came here. And in the same time, they were discussing and Brahma appeared. And Brahma said, oh, why you are debating? There was already fixed. So you're supposed to marry. And Shankhasura would accept. Okay, we'll do the Gandharva Vivaha then. So Gandharva Vivaha. There are the variety of the vivaha. The marriage is normally it explains 8 types of marriage in different scripture. The aiming is the Brahma vivaha. You go to the girl's father's house and you ask and father comes and they do the swayambar, kanyadan. So that is the Brahma vivaha. And similarly Kumbha vivaha, Gandharva vivaha, and Naga vivaha. So there is a variety of the marriage types. And Shankhasura wants to do the Gandharva Vivaha. Gandharva Vivaha is dancing and also doing the attraction, but not in a big volume. So it's like love marriage in nowadays. So he wanted to do that. And she accepted. They get married. And after marriage, both you are yogi. So when you have got the same energy, both you are yogi, there will be no fight. Evening, oh, I want to do meditation. And he will not say, oh, no, this time for dinner. Or she will not say, oh, no, this is time dinner, because both are meditative. They sit together and meditate jointly. That's why it is saying that whatever you do for spirituality, it's better to do together. So there will not be conflict. So you meditate together, you yoga, doing yoga. So sometimes you do partner yoga as well. And sometimes you meditate together, you go retreat, pilgrimage together, and nice bond. And you're living for a purpose, not for physically or not for just maintaining your housewife or house life. So you're going together. So Shankhasura and Tulasi also married now in this point. Shankhasura ko vardaan tha ki Shankhasura aap bahut balshali hai to aapko kya hoga ki ek Tulasi ke saath mein vivah hoga. Tulasi bahut sare dharma yogini hogi aur Tulasi bahut hi धर्मात्मा रहेगी तो आपके लिए भी बहुत सुहाग देने वाली रहेगी और पत्नी परायण और पति परायण होकर आप दोनों को शक्ति बहुत बढ़ेगा. तो ब्रह्मा जी का ये आशीर्वाद था. इसलिए क्या है कि पति पत्नी का जो होता है, जो लिखा होता है वही रहता है. इसलिए जो विवाह क्या है कि स्वर्ग में इसको फैसला हो जाता है और धरती में आके ये मनाते हैं. तो इसलिए क्या है कि शंखचूड़ भी वो पता करके ब्रह्मा के आशीर्वाद लेकर वो चला गया. गया तुलसी ध्यानस्थ थीं. जब तुलसी ध्यान करके रही थी तो शंखचूड़ गया और शंखचूड़ ने परीक्षा किया तुलसी को. तुलसी मैं सुंदर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, आइए विवाह कर लीजिए. लेकिन तुलसी ने भी परीक्षा किया, मैं ऐसे ही आकर्षित होने वाला पुरुष के साथ में नहीं रहूँगा. क्योंकि पुरुष पहले क्या है कि बहुत नरम होते हैं, आकर्षित होके होते हैं लड़की के, बाद में छोड़ देते हैं. इसलिए मैं तो कभी आकर्षित नहीं होता हूँ. तो उसने बोला, तो फिर शंखचूड़ ने, मेरे लिए भी ऐसा लड़की नहीं चाहिए, पहले आकर्षण होती है बाद में छोड़ देती है. तो इसलिए वो दोनों को बात विवाद हो रहा था. इसी समय में ब्रह्मा जी आ गए. ब्रह्मा जी ने बोला कि आप दोनों को पहले ही निर्धारित है विवाह, इसलिए आप विवाह कर लीजिए. तो दोनों ने क्या किया कि गंधर्व विवाह कर लिया और सुख शैल में रहे. और जो तुलसी और शंखचूड़ नाम का दानव का विवाह हो गया और धूमधाम साथ विवाह होने के बाद में वो लोग आपस में बैठते रहे. और तुलसी योगिनी धर्मपारायण थी, इस कारण से उसका जो दानव का बल भी बहुत बढ़ गया. एक तो पति पत्नी व्रता का धर्म, दूसरा क्या है कि उसके साथ में कृष्ण का कवच था,
दोनों करके बहुत बलशाली दानव हो गया। तो उसने धीरे धीरे धीरे तीनों लोक में शासन करने लगा। देवता दानव सब लोग क्या है कि त्राहिमाम होने लगे। तो उसका कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था, क्योंकि वो धार्मिक दानव था। लेकिन देवता लोक को स्वर्ग से उसने खेदा और देवता लोग दुखी थे, बाकी सब लोग सुखी थे। इसीलिए क्या है कि पति पत्नी बीच को अगर संबंध अच्छा हो जाता है तो दुनिया में कोई भी नहीं हिला सकते हैं। इसीलिए क्या है कि पहले पति पत्नी को सुंदरता किसमें रहता है, तो उनको एक आपस के संबंध में, जब संबंध बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि पति, अभी के जमाने में तो कैसा है कि पहले शादी के समय लेकर आओ तो शादी के पहले साल क्या होता है कि पति थोड़ा बोलता रहता है, पत्नी सुनती रहती है। और शादी के दूसरा साल क्या होता है, पत्नी का पावर बढ़ जाता है और पत्नी बोलती रहती है और पति सुनता रहता है। फिर तीसरा साल क्या होता है, पति पत्नी लड़ाई करते हैं और पड़ोसी सुनते रहता है। इसीलिए क्या है कि अभी के समाज में तो पति पत्नी बीच बहुत समस्या है कि एक दूसरे में शंका भेदभाव बहुत है। लेकिन हमारे शास्त्र बतलाता है अगर पत्नी और पति पति परायण और पति व्रता पत्नी व्रता होकर रहे तो उसमें से ज्यादा शक्ति किसी चीज में नहीं है। पत्नी व्रता का शक्ति, पति व्रता धर्म का शक्ति बहुत तेजस्वी होता है। शंखचूड को ऐसे ही मिला। इसीलिए ये समाज में, ये दुनिया में ये पुराण ऐसा शिक्षा देता है कि आप जहां भी है जैसा भी है तो आप क्या कर लीजिए, आराम से आपने एक दूसरे को गुण को दोष को स्वीकार करके ही आपने दाम्पत्य जीवन चलाना चाहिए। सो देर वॉज अ पर्सन, सो ही वेंट टू मेडिटेट, ही आस्क्ड टू गॉड, ओ गॉड प्लीज गिव मी परफेक्ट वाइफ। सो परफेक्ट ब्यूटिफुल, परफेक्ट एंड रिच, इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड एंड स्पिरिचुअल, perfect girl. And the God said, well, I'm happy with your meditation, but I cannot give this boon for you. And he said, why not? What's wrong with this? And he said, because this sort of girl doesn't exist in the world. Yeah. Come to the yoga and daily life, yeah? Otherwise. So, and Brahma said, so that means whatever you have, the successful marriage is not that perfect husband and perfect wife, but that is you accept whatever you have got, negativity or positivity, you accepting. So it is saying that in successful marriage, you need to fall in love every day, but with the same person, not with different person. And also always continuous forgive. So it's a good union, unification between two persons. Forgiveness, the unification between two persons. The forgivers, two forgivers company is the marriage, successful marriage. And Tulasi and Shankarchud was also there. So they were very happy couple. And he was Krishna's bhakta as well. That's why he did not that much harm. But he's very powerful and he always tortures God. And he attacked the Indra in Swarga, in heaven. And they always ran away. When the demon's powers came, the God always in problems. And Shankarchud, Tulasi, very happy. Their power was very popular in Triloka. Satyalok, that's Martalyok, too here in the earth, in every way. So that's why they were very happy couple and wonderful couple. They always, they were the example couple also. So it is saying that this Puran want to say that the strength of the love is powerful. So strength of love is very powerful. If husband and wife have got a strong bond, then they can do anything. So, but if there is have got the problem, then other people come and they take advantage, obviously. So that's why it is saying for the beautiful couple life, you never leak your secrecy to other people. So other people will put vested interest and take benefit. So if you see the Shiva Parvati also, they have got a good bond. So always, so they help each other. So in husband and wife also, when we see that our life is not for to that pleasure, not only for intimacy, not only for the children or family. Both of you came for marriage, for the helping each other for spiritual growth, happiness. If you understand in that way, definitely she's helping to him and he's helping to her. And
this will be very happy marriage life, couple life. In the same way, here also Shankar

That's why Tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And Tulasi is offering to Saligram. And Saligram anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find Saligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is what is the Saligram. So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the Tulasi, it is saying that it's a Vishnu. That's why many people, they keep at least five Saligrams. The five Saligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This is Pancha Devata. So everyone, they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a five Saligrams. So everyone can keep in Saligram and Tulasi. It has got medicinal benefits, herbs, and also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first, then they supply first is oxygen mask. So nature will give you oxygen masks in your home. When you plant Tulasi in front of your door, in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free. That Tulasi is oxygens, and that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial Tulasi. If you put in tea, there is Tulsi tea as well. If you wear Tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always two pieces of Tulasi, that removes the bacteria and helps you. The Tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, Tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality, or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and Tulasi's Mahima. And Jai Bole Siyavara Ramachandra Ki, Jai Vishnu Bhagwan Ki, Jai. जब शंखचूड़ को जब जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल गया बड़ा था क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके बाद में पति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया पाँव धो लिया घर में लेकर गया खाना दे दिया रात में फिर रतिक्रिया किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपनी पत्नी होकर भी तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है तो इस दुनिया में पति व्रता धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी जब इनका पत्नी व्रत धर्म जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा जय बोलिए भगवान नारायण की जय तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है ना तो भाई नहीं तो कोई जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है लेकिन दोनों दुश्मन है तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है अच्छा नहीं है तो ये शत्रु के रहता होता है इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दिया देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा माफ दीजिए

उलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े, दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े। तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे, इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिव जी आ गए और भोले भाले शिव जी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है, आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया, वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है। अभी सत्ययुग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे, तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है, इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए, तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था, अब क्या है शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

स्वरूप ओम नमो प्रभुति प्रणमा ब्रह्मानंद नुरुर्वासी ओम शलकपुरी जी महादेव की जय देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय श्रीदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमान स्वामी श्री माधवानंद ब्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद ब्रजी गुरुदेव की जय आज के आनंद की जय सब संत ऋषि

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this in their language. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se aap do baithe ho to peeche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare hain. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे हैं, हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत

छत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्संग। सत इज द गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, एवरी थिंग्स, सत्संग, देन इट इज इट प्लीज कम विथ मी, वी स्टे ऑल टूगेदर, वी ऑल वी टूगेदर लाइक वन, यस, देन इट इज ओके, अदरवाइज आधे सीटें लाग जैसे दूध आगे यू करे, फिर आगे बड़े बड़े आदमी होता है ना, वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे, और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो, सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न हु शुड बी हियर फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड लाइक दिस, देन वी हैव ऑल, तो इस इज सत। सत क्या है, वो सत कहाँ है, वो सत कहाँ से आया है, सत केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, जानवरों का भी है, वो भी आता है तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट where make the child, yes in my like this, even that then it is said yes this is very good, so child is going front and mother is behind taki the children can be with mother very nice and that and not going out, then what happens is something, so sat wo satya hota hai, सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, वही सत्य कहा जा गया है, तो सत्संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किसी बक बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो टू सिट लाइक दैट, सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेर यू आर सिटिंग, सो very nice satsang, to satsang ke bare mein ek bhajan lagao satsang ka, satsangiyon ki san hai na bhajan apna bab ji ka hai na, haath lagao to beta bab ji ka madhavanand ji ka hai bhai, madhavanand ji bhagwan sare vishw mein padare hue hai wo bhi, aur mahaprabhu ji जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो मेरे, तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉट सन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना
They come inside, and they talk the Indians all like this. So, don't go home. No school, jana jana, kuch karna nahi tha. Only those who are learning, very people. So they were like doctors and this or this. Otherwise, all people was, abhi bhi aapko le rahe hain. Abhi bhi unko barabar nahi jane dete hain. To phir kitna karte karte, Modi ji ke, nahi Modi ji kya? दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरी वन दे ब्रॉट दी ऑलरेडी टू इंडिया सो इंडिया का कितना वेरी बिग बिग बिग आई हैव नॉट सीन एवरीथिंग India, itna lamba chada hai. I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there? And all have different language. Many, many, many, many languages hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. और हिंदू कहाँ से हिंदू बहुत दूर से है ये क्या नहीं हिंदू कहाँ का किसको कहते हैं बताओ हाँ है नहीं संस्कृत में तो है हाँ सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसी के ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस सो देयरफॉर वी नो दैट एवरीथिंग दैट इन माय कंट्री एंड वेट माय कंट्री दैट व्हेन आई गो टू द एयरपोर्ट एंड देन इज एवरीवेयर या So I'm coming always with aeroplanes, yes, and I see there, from that I see it's our India, Hamara idhar se, so that all my disciples from other countries, they have all understood everything, and they practice here all the times, and coming, don't worry, they are not, but we want to come to here. स्वामी जी है महेश्वरानंद गए तो मैं महेश्वरानंद को मैं क्या करूं मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो लेकिन वो ही कर रहे हैं मेरे लिए हाँ पहले मैंने कराया बट इस एंड आई टॉल्ड देम बट यू डिडंट नो आई हैव डन एंड व्हाट डू यू व्हाट विल डू एंड सो माय डिसाइपल्स दैट एवरी बर्न इन द होल कंट्रीज होल वर्ल्ड कंट्रीज की अब They are come and made. So in government, India में कहते हैं कि महेश्वरानंद है वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है हुआ है तो वैसे ही करना चाहिए और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो आप उसको बोलो आपका लेकिन बोलो कैसा क्या आप करो ये बात है नहीं तो मैं अगर ये इतना था कि नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर
they are coming for Mahaprabhuji ke aur Mahaprabhuji ke Mahaprabhuji Devpuri ji ka wo jo hai that is the first. And so Madhavanand ji, he went he from his house. From his house he went out. It was only like this. And he brought Mahaprabhuji. Mahaprabhuji jo hai, he came to my village, to my mother. And here my was staying in my house. And there was one very nice person in Rupavas mein. Aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the. But he was no very great, standing very great. वो महाप्रभु जी के पास आए थे तो वहाँ बिठा दिया कि बैठो और पढ़ाओ. तो बाप जी के वो नहीं थे इतना, छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी. एंड वो आते थे देन घर पे आते थे, फिर वो आते वो बैठते थे. तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है. रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है. लेकिन वो थोड़ा अब डब चप लगे हो गए यूँ से भी जगह हैं. हाँ लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा. और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव है. तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज, वेरी मेनी कंट्रीज. तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड. 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास. तो वो ठेठ तक जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से माँ महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है. अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है. अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है, कि मैं मनुष्य हूँ बस. अब हम मनुष्य हैं. तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है. जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना. हाँ ठीक है, आप लोग मेघवाड़ हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का. तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा. हाँ है कि नहीं? प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं? ए प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो. हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का. प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है, और देश में गांव बहुत बढ़िया है, और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है. और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है. ओके लेकिन आप देखेंगे इनको, देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का. तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए. और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो.

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधवानंद जी की जय। गुरुदेवा की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: माता पिता गुरुदेवा
0: की जय।
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: माधवानंद जी भगवान।

0: अलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi sestry a bratia,
0: डियर ऑल योगा प्रैक्टिशनर्स,
1: drahi všetci jogoví cvičenci,
0: ऑल our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste

0: É?
1: वही तो है ना, वही तो कह रहा हूँ ना. सो नाउ वी शुड हैव, यू हैव सीन एवरीथिंग. टुडे इज द बेस्ट डे, एवरीथिंग फॉर अस, एंड दिस इज फ्रॉम द होल वर्ल्ड. ऑल दे नो दिस डे इज व्हाट इज हैपनिंग एंड है गुड. It was from thousands of thousand years. This is from this days and this. So the Christians or any others, they are very late, and they all are have see everything exactly. Only that they tell other name or something this, so that we are here. And then after tomorrow we will know further. Like also then the Christians apne, so they are coming also like this day like this here. Eh? Yeah, Christmas, yeah. And next day they are all coming and prasad and this and that and everything. So it is same thing is that from Christians. Many, many this and that. Muslims also, they have also day, days when, and they always, they will make very clean and very good all the times. Others people can do something, but Muslims, they will do all very good their days and their bit, and that is like this. So, but this all came from हमने इंडिया और इंडिया का मतलब मीन्स दैट ऑल द गॉड्स एंड गॉड्स विच दैट साइड वी डोंट नो व्हेन वाज इट बिकॉज सो मैनी ईयर्स ओनली वी कैन सी फ्रॉम भगवान शिवा. शिवा का है ही है और उसके बाद अपने विष्णु और ये आते हैं, इनके बाद में राम जी. भगवान राम ही इज देयर ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट दैट दिन अंडरस्टूड दैट व्हाट इट इज भगवान राम. उसी के साथ साथ अब कम द कृष्णा एंड दिस ऑल इट इज कमिंग देयर कृष्णा एंड दिस. ये तो ओनली अबाउट 20,000 और व्हाट इज देयर देयर डूइंग है. नहीं कृष्णा हाँ. सो दे आर इट इज मैन. सो दे आर ऑल्सो देयर बट दे हैव डन. सो भगवान कृष्णा तो कृष्णा जो है या द कृष्णा द ग्रेट एंड वेरी नाइस एंड विद कृष्णा वॉज हिज वाइफ शी वॉज देयर ये रुक्मणी जी. सो वन हैव टू वी शुड ऑल रुक्मणी जी यू शुड से द रुक्मणी. अब नाउ समबॉडी हैव समथिंग इनसाइड इज नॉट ऑन हाउ मैनी ईयर्स इज ऑनली नॉट 100 इज एंड सो दे पुट इट द ये रुद्रिक्षा और वो व्हाट इज दैट राधा. और वो राधा जो है वो राधा तो उनकी भक्ति थी, उसकी भक्ति करें, उनकी भक्ति करते हैं उसके अंदर भक्ति उसकी है. लेकिन अब तो वो रुक्मणी गुणी माता जो है उनका और इनका जो है राधाई, तो राधाई का उन लोगों ने तो भगवान कृष्ण को भी नीचे डाल दिया. यस, धीरे धीरे सब वो. इसलिए वी ऑल शुड ऑनली सेड that Bhagwan Krishna and Rukmani. Ye likha ke likho aapke upar mein, okay? As today likh do every name, hamesha Bhagwan kya? Krishna or Rukmani. Wo hi hai. Aur uske saath dusron ki hai. सभी जाते हैं आते हैं सबका हर प्रकार का होता है ना, तो वैसे जाएंगे, लेकिन उनको तो रुक्मिणी और इनकी कृपा है। लेकिन अब राधा जी को पता क्या, वो राहा धा है तो वो धा है उसका बराबर नहीं है, इसीलिए हम करेंगे हमेशा वापस उसी को, इनका भगवान कृष्ण और रुक्मिणी सभी लिख के देव। आपको पता नो ये बाटी जी रुक्मिणी, हु डोंट नो एंड वाय एंड हाउ इट इज वी विल डू इन द सत्संग, ओके, इन द सत्संग मैनी टाइम। सो भगवान कृष्ण भगवान की कृपा है उनके पास में है, और वो है उसके आगे। अब ये तो लोग करने लग दिया, इसको पता तो चलता ही नहीं है, हमारे लोगों को भी पता नहीं है कि कोई नहीं ऐसा है ही नहीं, है कि नहीं, क्यों एकदम इनको। तो अब इसको वापस उस माता को लाना चाहिए, रुक्मिणी माता को, वो है माँ, उसकी रखता है, उनके साथ रहना है। कर दिया सही, रुक्मिणी है ये, कौन ऐसे कर रहा है, वो ही रहना चाहिए। सो ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायण।

की देव पुरी सा महादेव की सब ऋषि मुनि महात्माओं मात पिता गुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति। So